यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर होगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को

0: आने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार

0: के लिए मुंबई से जीवन भासौ।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर

0: लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects

मुझे कोई ऐसे दे कोई ना लिखे ऐसे। वेल थैंक यू सो मच अभिजीत, आपने भी लिखी कि ना पता दिया करने। अब ये देखो लिखी ऐसे, गुड मॉर्निंग डियर आरजे सर, वाओ नाइस प्लेलिस्ट, एंजॉय कुरिया सु कोई ना लिखी ऐसे, हैव अ नाइस डे फ्रॉम नाउजान गोलाघाट असम, करण गोगोई, भोला, शिवम, बिटू, संतोष, संतोष दे, बाबू एंड मनाप कोई ना लिखी आज। वेल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अपनी सब पी ट्यून कर जानिने बेसि खुशी आज एक निचिना को शुनी थकिम मैं भल गाना बजा दी। तो नेक्स्ट गाना को शुनब आपे उदित नारायण और अलका यज्ञिक लगा फिल्म आज फर्स्ट और यू गीत लिखा शमीर, म्यूजिक दिया उत्तम सिंह।

Well, एक चीज आपको लिखी ना पता ऐसे नमस्ते आरजे, प्लीज प्ले द सॉन्ग दो लफ्जों की है दिल की कहानी मूवी ऐसे द ग्रेट गैम्बलर और एक गीत लिखी ना पता ऐसे रिक्वेस्ट करी ना रमेश पात्रो एंड रुनु पात्रो गोलाघाट आसाम परा और एक गाना डेडिकेट करी दिया ऐसे बैकन मुंडा अमल बसुमतारी विमल बसुमतारी जोगेंद्र रोंगपी शिकारी रोंगफार चुबा के जमीर रघुवीले मेथा देवाशीष हजरीका बीरेन हांसे दुर्गेश नगनपुरी एंड ऑल एफएम लिसनर्स एंड फ्रेंड्स को ये लिखे से वेल थैंक यू सो मच रमेश पात्रो एंड रुनु पात्रो फॉर योर मैसेज।

इस नुस्खा नीचे होनी वो एस पी बाला सुब्रमण्यम लगा वास्ते फिल्म से सजन और एक गीत खत्म हो गई ना 12:30 हल कि अपनी कान शुनी हम न्यूज हेडलैंस तार पास प्रोग्राम कन्टिन्यू कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.2

0: 2.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रेडियो के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से आपकी होस्ट कृति मेहता। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, एक बीमारी जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन जिसे समझकर, पहचानकर और समय पर इलाज कराकर हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कंफर्टेबल हो जाइए, नोटबुक और पेन रेडी रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए। और हाँ, ये इंटरैक्टिव है, सोचिए जैसे हम घर में बैठकर बात कर रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो बाद में इंडियन कैंसर सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल कीजिए, नंबर है 9910516562। दोबारा नोट करिए 9910516562। आज के टॉक में हम समझेंगे कि कैंसर क्या है, ज्यादातर किन कारणों से होता है, क्या जनरल सिम्टम्स हैं और किन फैक्टर्स का रोल रहता है कैंसर कॉज करने में। पहले समझते हैं कैंसर क्या होता है और उसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारे बॉडी में कई मिलियन सेल्स होते हैं जो बढ़ते हैं और मरते हैं। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स जो नॉर्मल तौर पर कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते और मरते हैं, कंट्रोल से बाहर बढ़ने लगते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स ट्यूमर बना सकते हैं या फिर ब्लड और लिम्फ सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड हो सकते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। सिंपल इंग्लिश में, जैसे गार्डन में घास फूस अनवांटेड तरीके से बढ़ जाती है और दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही कैंसर सेल्स बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। डीएनए या जेनेटिक सिस्टम में खराबी के कारण ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बेसिकली बॉडी के सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ है, एक्स्ट्रा मास या गांठ। ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, बिनाइन या मलाइनेंट। बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते, ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, ये दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं होते। इनके आसपास एक स्मूथ बॉर्डर या कैप्सूल होता है, ये जनरली जानलेवा नहीं होते, लेकिन ये किसी जरूरी ऑर्गन जैसे ब्रेन पर प्रेशर डालें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चर्बी की गांठ या फाइब्रॉइड्स। अब दूसरा है मलाइनेंट ट्यूमर, ये कैंसर होता है। ये सेल्स अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं और आसपास के हेल्थी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ये ब्लड या लिम्फ सिस्टम के जरिए बॉडी के दूसरे अंगों में फैल सकते हैं, इस प्रोसेस को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। ये काफी अग्रेसिव होते हैं और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो जान के लिए खतरा बन सकते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अब इनकी बात करते हैं। इसे आप कॉशन वर्ड से याद रख सकते हैं। कॉशन, सी से चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, मतलब कब्ज या लूज मोशन जो ठीक ना हो। ए से अ सोर दैट डज नॉट हील, मतलब छाला जो 3 हफ्ते से ज्यादा ना भरे। यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। इसे ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में होल्स या सुराख होते हैं, जैसे नाक कान मुंह आदि। केवल महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नॉर्मल होता है और किसी जगह से खून आए तो वो नॉर्मल नहीं होता है, जैसे खून निकलना मुंह से, जैसे कफ में, स्टूल में, यूरिन में।

ब्लीडिंग ये नॉर्मल नहीं है। अब टी से थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, मतलब स्तन में गांठ या बॉडी के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग। आई से इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, पेट की गैस या निगलने में दिक्कत। ओ से ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, मतलब तिल या मस्से का रंग साइज बदलना। एन से नैगिंग कॉफ और होर्सनेस, लंबे टाइम तक खांसी या आवाज में फर्क। और कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बिना किसी कारण वेट गिरना, कॉन्स्टेंट थकान, फटीग, दर्द जो ना जाए, बुखार जो ठीक ना हो। दोस्तों ये सिम्टम्स कई नॉर्मल बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चलें तो डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंप्स में फ्री स्क्रीनिंग भी होती है, इसके बारे में आगे बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा कोई सिम्टम इग्नोर तो नहीं किया है, सोचिए। अब हम कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। पहले बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो जो हम अपने लाइफस्टाइल बदल कर कंट्रोल कर सकते हैं। ये 30 से 50% कैंसर्स को बचा सकता है। साथ साथ ये भी समझते हैं कि बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टोबैको या तंबाकू का यूज, सबसे बड़ा कल्प्रिट है। स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, धूम्रपान, ये लंग, माउथ, थ्रोट कैंसर का खतरा बढ़ाता है। इंडिया में बहुत कॉमन है। छोड़ने से रिस्क कम हो जाता है, तो बचने के लिए स्मोकिंग, तंबाकू छोड़ दें। अगला मॉडिफाइबल फैक्टर है अल्कोहल। ज्यादा शराब से लिवर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क कैसे बचा सकते हैं? मॉडरेशन में लीजिए, या बेहतर है कि अवॉइड ही करिए। फिर एक फैक्टर है अनहेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट ज़्यादा, फल सब्जी कम, कैसे ठीक कर सकते हैं आप? फाइबर रिच डाइट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाना पदार्थ खाएं। और फिर फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी, इसे कैसे कर सकते हैं आप? करेक्ट, रोज एक्सरसाइज करिए, वेट कंट्रोल में रखिए, वॉकिंग, योगा, ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आप एक सबको करनी चाहिए। और इन्फेक्शंस जैसे HPV, ये सर्वाइकल कैंसर करता है, हेपेटाइटिस बी या सी जो लिवर कैंसर कर सकता है। वैक्सीन्स अवेलेबल है 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए, HPV वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बताओ कि क्या आप आज से एक मॉडिफाइबल फैक्टर छोड़ने का संकल्प लेंगे, जैसे सिगरेट छोड़ना या रोज 30 मिनट वॉक करना? बल्कि फैमिली को भी मोटिवेट करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जिनके बारे में जानकर अलर्ट रह सकते हैं। ये कैसे हैं? एयर पोल्यूशन एक कैंसर कारक है। गाड़ियों का धुआं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के पोल्यूशन से लंग कैंसर हो सकता है। कंट्रोल करना इंडिविजुअल लेवल पर मुश्किल है, पर हाँ हम अपना योगदान दे सकते हैं। फिर एक फैक्टर है केमिकल एक्सपोजर, ये भी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज जैसे सीमेंट, रबड़, पेंट या रासायनिक पदार्थों की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें अनहेल्थी एक्सपोजर रहता है। तो मास्क पहन के बचाव करना इन लोगों के लिए ज़रूरी है।
फिर रेडिएशन एक्सपोजर्स भी एक नॉन

0: मॉडिफाइबल कैंसर फैक्टर है, जैसे यूवी एक्सपोजर यानी सूरज से कैंसर हो सकता है, सन का ज़्यादा एक्सपोजर भी एक फैक्टर है। इसलिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने और सनस्क्रीन लगाइए। फिर एक फैक्टर जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है एज। बढ़ती उम्र के साथ रिस्क बढ़ता है। ज़्यादातर कैंसर 50 से ज़्यादा एज में कॉमन है, पर ये ज़रूरी नहीं है। और फिर फैक्टर है जेंडर। कुछ कैंसर्स महिलाओं में होते हैं जैसे ब्रेस्ट, सर्वाइकल, कुछ पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट। फिर एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है जेनेटिक्स या हेरिडिटरी कंडीशंस। कुछ सिम्टम्स जो पहले से होते हैं, अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूरी है। ब्रेका जीन्स ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से लिंक्ड है। और कुछ ऐसे भी कैंसर्स होते हैं जो फैमिली हिस्ट्री में होते हैं पर जेनेटिक नहीं होते। फिर एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर रेस और एथनिसिटी भी है। कुछ कम्युनिटीज में कुछ कैंसर्स ज़्यादा हैं। ये जानने से डरना नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव होना है। फैमिली हिस्ट्री हो तो डॉक्टर से जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पूछिए। अर्ली स्टेज डिटेक्शन में सर्वाइवल रेट 80 से 90% तक हो सकता है, इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये था आज का ओवरव्यू। कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। इंडियन कैंसर सोसाइटी आपके साथ है। अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन सब में। आप ICS डिटेक्शन सेंटर जो कि 42 नंबर बाबा रोड दिल्ली में स्थित है, या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में चेकअप कराइए। हेल्पलाइन नंबर्स नोट कीजिए। नंबर है 9910516562। दोबारा नोट करिए 9910516562। और वर्ल्ड कैंसर डे या नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर इवेंट्स ज्वाइन करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए और फैमिली को एनकरेज करिए। क्या आप रेडी हैं कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए? स्वस्थ रहें, सेफ रहें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आकाशवाणी पर आप सुनने जा रहे हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम जिसे आप प्यार से कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग। तो लीजिए दोपहर का वो समय जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं, तो साथ में चाहते तो होंगे कि आपकी पसंद का गाना भी कोई प्ले करते। और इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर, फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपने नाम के साथ भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट, उनकी डिमांड, उनकी फरमाइश इस कार्यक्रम में प्ले की जाए। इसलिए तो हम हैं आपके साथ। मैं हूं रंजन।

दबंग टू से आप ये गाना सुन रहे हैं। आपके मैसेजेस लगातार पूरे जोर शोर के साथ हम तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल गरजे थे कल शाम दिल्ली में। और जिस तरह से मौसम ने करवट बदली और मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, बहुत से इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है, बारिश से मुझे याद आया, देखिए बारिश में क्या होता है, कौवा जो होता है अगर जब अपना घोंसला बनाता है उसमें वो अपने अंडे देता है तो उसकी रक्षा के लिए इर्द गिर्द पेड़ पर मंडराता है और आप अगर वहां से गुजरते हैं तो सर पे वो चोंच मारता है और लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोले तो कौवा काटे, ऐसा कहा जाता है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की पसंद, बॉबी फिल्म का गाना झूठ बोले कौवा काटे। वैसे अंग्रेजी में इसके अनुरूप एक और बात कही जाती है, लायर लायर पेंस ऑन फायर।

ये गाना आपने सुना बॉबी मूवी से। 28 सितंबर 1973 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। महान शोमैन राज कपूर साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, अपने बेटे को डेब्यू कराया था ऋषि कपूर साहब, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। खैर आप बिल्कुल मत घबराइए, ना काले कौवे से ना सफेद कौवे से। जी आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ सफेद कौवे भी होते हैं। नहीं देखे आपने? मैंने देखे भाई। सो आप भी लकी होंगे, देयर टाइम्स यू नो होते हैं भाई, नेचर में बहुत कुछ होता है। अमरावती महाराष्ट्र से पंकज हमारे पास मैसेज लिख के भेज रहे हैं, गुड आफ्टरनून मेरे वाला सॉन्ग, और इन्होंने तीन चॉइस दी हैं, और खुश हो जाइए आपकी पहली चॉइस ही मेरे पास मिल गई है, वो हम प्ले करने जा रहे हैं। द सॉन्ग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड इज वादा रहा सनम, खिलाड़ी मूवी से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। आपने तो नाम जो है गायक और गायिका के दोनों ही सही लिख के भेजे हैं, तो पंकज जी आपकी रिक्वेस्ट मेरा वाला सॉन्ग पर। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ, आपकी यही चाहत है जो आपके और हमारे इस परस्पर प्रेम को बनाए रखी है। इट्स बिन मोर देन 90 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको को बस आप इसी तरह से रिक्वेस्ट करते रहें, हम यूं ही गाने बजाते रहें। अब देखिए, इसके अंदर मुझे बड़ी अच्छी कुछ बातें लगती हैं। कुछ लोग मैसेज लिख के भेज रहे हैं कि भाई मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस मैं तो आपके प्रोग्राम्स को एंजॉय करता हूं, कोई भी गाना बजाइए, मैं आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूं। सौरभ अनेजा ने लिखा कुछ। सौरभ, आपने अपने मैसेज के अंदर वो डिलीट वाला फंक्शन हटा दो ना, देखने के बाद जो खुद से उड़ जाता है, क्योंकि देखिए हम आपका मैसेज देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे मैसेज पे जाते हैं, फिर गाना बजाते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं, फिर वापस आते हैं, देखते हैं कहाँ गए। अरे ये तो गायब हो गया। खैर, ऐसी बात लिख के भेजी है गुड्डू धाकड़ ने, कह रहे हमारा बस नाम ले लीजिएगा। और कोई बात नहीं, नाम तो हम लेते ही रहते हैं। हम ये चाह रहे थे कि थोड़ी मेहनत आप भी करें और कोई गाना एंजॉय करने के लिए बोले भाई है दोस्त, दोस्त हैं दोस्त है। सुना आपने शशि कपूर साहब आ गए थे थोड़ी देर के। तो वो बिंदास अंदाज में फिल्म का नाम लिखिए, गाने के बोल लिखिए, मेरे लिए आसानी हो जाती है, और आखिर में अपना नाम लिखिए। और कोई अगर याद जुड़ी है तो वो भी लिख के भेजिए। जैसे इन्होंने अभी तो नहीं भेजी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये जो सॉन्ग मैं बजाने जा रहा हूँ, ये हमें रिक्वेस्ट किया है शालीमार बाग दिल्ली से सुनीता शर्मा जी ने, और ये गाना सुनना चाहती हैं कभी खुशी कभी गम से सूरज हुआ मध्यम। वैसे तो सूरज देखिए मध्यम ही हो रहा है दिल्ली में, ऐसे लग रहा है किसी ने रिमोट से उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दी हो। तो ये गाना आपकी पसंद का मेरे वाला सॉन्ग पर। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो हमारा नंबर है 9868107070, 9868107070, 9868107070। इस पर कीजिए व्हाट्सएप और भेजिए अपनी पसंद का सॉन्ग मेरा वाला सॉन्ग में।

होली चौक उत्तम नगर से हमारे पास मैसेज आया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन एंड दीपांशु खोरवाल का, और इन्होंने दो तीन रिक्वेस्ट लिखी हैं। देखिए, मैं जो आपकी पहली रिक्वेस्ट का जो गाना है मिल गया है और वो हमने क्यू भी कर दिया है, फिल्म संगम से हर दिल जो प्यार करेगा। और एक मैसेज हमारे पास आया है फरहान का, दानिश का, आकिब का, मोहम्मद राघिब रजा का, कह रहे हैं कि आपको मैसेज बहुत बार किया, हमारा गाना सुनवा दीजिए। आपकी पसंद का जो गाना आपने अभी तक रिक्वेस्ट किया था वो तो मुझे नहीं मिल रहा, कोई और आप रिक्वेस्ट भेजें तो हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एक शायद आपने रिक्वेस्ट अभी बदली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने नहीं सेम मैसेज आपने 8-10 बार भेज दिया है। कोई बात नहीं, एक आपके नाम से मिलते जुलते एक और नाम का भी मेरे पास मैसेज आया था, मैं उनका नाम अभी मैसेज सामने नहीं आ पा रहा है। फैज़ान और जैनब कुछ लिख रहे हैं, अभी हेलो लिखा है, आगे कुछ वो इस समय इस दौरान लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो जल्दी कीजिए। घबरा गए, उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एक साथ लिख के भेजा करें। देखिए, अब आपका मैसेज मेरी नज़रों के सामने था, लेकिन उसमें क्या रिक्वेस्ट है हमें नहीं पता, हमको सचमुच नहीं पता।

0: प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और हर दिल जो खाने से प्यार करेगा वो खाना खाएगा। वाह वाह, खाने का समय है भाई, थोड़ा बहुत ब्रेक तो बनता है। आप भी 2-3 मिनट के लिए अगर जाना चाहें, रसोई से खाना परोस लीजिए, उठा लाइए, बैठ जाइए रेडियो के पास और खाइए। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट के आएंगे। बस यूं गए और यूं आए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
11: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

लो जी, हम तो वापस आ गए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैंने पूरा समय दिया था, अगर आप खाना परोस लाए हैं तो आप खाना शुरू कीजिए. आपके पसंद का गाना हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. बस यूं गए और यूं आए. मुझे भी थोड़ा दूर जाना पड़ता ना, कंप्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सर्वर तक जाता है, सर्वर रूम से वो रिक्वेस्ट को ढूंढ के लाता है. मतलब इतना समय नहीं लगता लेकिन ले आता है. और आपकी पसंद हम बजाने जा रहे हैं भाई. मोहम्मद राकिब, रजा फर फ़खर जमान, दानिश खान एंड आकिब रज़ा. आपके पसंद का गाना हम ऑलरेडी बजा रहे हैं, सुनिए. आपने पसंद किया कुछ कुछ होता से साजन जी घर आए. और कुछ लोग यहाँ पे नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सीमित समय में बहुत ज़्यादा गाने तो हम नहीं बजा सकते, लेकिन जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट हम आपकी प्ले कर पाएँ उतनी हमारी कोशिश रहती है. कल भोपाल में भी बारिश हुई थी, ऐसा लिख के भेजा है हमारे पास राम बाबू मालवीय और मनीषा मालवीय ने. इन्होंने तीन चार रिक्वेस्ट, यहाँ पर दो ही रिक्वेस्ट नहीं, एक ही गाने को दो बार पूछा है. मैं कोशिश करता हूँ आपकी पसंद का गाना हम प्ले कर पाएं.

और आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंच रहे हैं। जैसे पुणे से हमारे पास एक मैसेज लिख के भेजा गया है और वो कह रहे हैं कि आई एम थॉरली एंजॉयिंग योर शो, थैंक यू सो वेरी मच। आपका नाम है रोहित, पुणे से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, डबल थैंक यू जी। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं। एक गाना हमारे पास रिक्वेस्ट करके भेजा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पापा कहते हैं मूवी से, और ये गाना हमने ऑलरेडी प्ले कर दिया है। बस मेरी दुविधा ये है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आपका मैसेज भीड़ में कहीं खो गया है तो मैं वो जैसे ही मैसेज ढूंढ पाऊंगा। हाँ मिल गया जी, मिल गया। सुशील यादव एंड रेणु यादव उदयपुर राजस्थान से, हिरन मगरी सेक्टर 4 से। मुझे लगा हिरन नगरी लिखते हैं भाई, आपने सही लिखा कि नहीं, हिरन मगरी मुझे कंफर्म कीजिएगा क्योंकि राजस्थान में हिरण बहुत है, कहीं हिरण नगरी तो नहीं लिख रहे थे, मतलब आज क्लियर हो ही जाए, है ना। बाकी आपकी पसंद का गाना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है जंगल, जंगल में है शेर और कुछ हिरण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो का कार्यक्रम मेरे वाला सॉन्ग, और मेरे वाला सॉन्ग लेकर मैं आज हाजिर हूं आपके साथ रंजन। आज है फ्राइडे और फ्राइडे में माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। फ्राइडे हाफ डे हो जाता है कुछ लोगों का, सोचते हैं बस अब आधा दिन काम कर लिया जल्दी घर जाते हैं और वीकेंड की शुरुआत करते हैं। अब घर की सफाई भी तो करनी है ना या फिर आपको एंजॉय करना है, कोई फिल्म देखनी है और गाने सुनने, तो उसके लिए तो हम आपके साथ हैं। ये छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं। बस यूं गए और यूं आए। और हाँ, अगला जो गाना हम बजाने जा रहे हैं, बड़ी देर से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। नाम है इनका पूजा खन्ना, सुभाष नगर से लिखती हैं कि इनके घर एक प्यारी सी बिटिया आई है, तो इनका जो गाना है वो मैं आफ्टर द ब्रेक जरूर बजाऊंगा और मैंने क्यू कर लिया है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहें।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बस ज्यादा समय नहीं रह गया है और हमने जो है जैसा रिक्वेस्ट आपने भेजी थी वो हम प्ले करने जा रहे हैं। पूजा खन्ना सुभाष नगर से आपके लिए और आपके परिवार के लिए, स्पेशली नन्ही परी के लिए।

मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत देर तक आपके साथ जुड़ा रहूँ, आपके गाने बस यूं ही मैं चलाता रहूँ, लेकिन क्या करूँ। ज्योतिका सिंह आ गई हैं स्टूडियो में आशियाना अगला कार्यक्रम लेके, और अब ये इशारा है कि मुझे यहाँ से जाना है, जाते जाते आपके कुछ एक नाम ज़रूर ले लूँगा, बस समय की दिक्कत है। और आपने मेरी बात बिल्कुल, मेरा ज्ञान बढ़ाया। आप कह रहे हैं कि मगरी का मतलब होता है पहाड़ियों के ढलान के बीच बसा एरिया, और हिरन मगरी ही सही जगह है। थैंक यू सो वेरी मच, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। राजा और रंग का गाना सुना दीजिए बस, अब और समय नहीं है। वरुण वाज ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपने लिखा, फिलहाल रंजन को दीजिए इजाज़त, मैं यहाँ से हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, मैं यहाँ से हो रहा हूँ लापता, और फिर मिलूंगा इन्हीं एयरवेव्स पर। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। टेक केयर, बाय बाय।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना रेनबो डेस्टिनेशंस एफएम रेनबो पर। देखिए, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हर घर में वेकेशन प्लानिंग भी। कोई हिल स्टेशन देख रहा है तो कोई बीच डेस्टिनेशन, लेकिन आज रेनबो डेस्टिनेशन में हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल में, यानी कि मध्य प्रदेश। एक ऐसा राज्य जहां हिस्ट्री भी है, वाइल्ड लाइफ भी, स्पिरिचुअलिटी भी और एडवेंचर भी, और हाँ, सबसे ज्यादा यमी यमी अमेजिंग फूड भी। सबसे खास बात, ये डेस्टिनेशन फैमिली वेकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, यंगस्टर्स के लिए फोटोग्राफी और एडवेंचर, और बड़े बुजुर्गों के लिए इतिहास और शांति। तो चलिए निकलते हैं एक खूबसूरत से सफर पर, मध्य

मोनाली ठाकुर फ्रॉम द मूवी दम लगा के हाइशा, एक ऐसी मूवी जिसने हमें बताया कि आपकी बॉडी शेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो आपका रिश्ता हमेशा साफ रहेगा, प्यार उसमें बना रहेगा। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं कहां? मध्य प्रदेश की तरफ। जी हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गेटअवे है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अपर लेक और लोअर लेक के किनारे बसा हुआ ये शहर मॉडर्न भी है और हेरिटेज से जुड़ा हुआ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भी कई बड़े शहरों से यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स तक आपको मिल सकती हैं। भोपाल का रेलवे जंक्शन भी, जी हाँ, हर तरफ से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यहीं से आप सांची भी जा सकते हैं, भीमबेटका और पंचमढ़ी जैसी डेस्टिनेशंस की तरफ आसानी से जा सकते हैं। और फैमिली वेकेशंस में एक और प्लस पॉइंट पता है क्या है, भोपाल का जो पेस है ना, बहुत रिलैक्स्ड है, यहाँ ट्रैवल भी सुकून से होता है। वहीं अगर मैं आपको जून के मौसम की यहाँ जानकारी दे दूँ तो गर्मी तो आपको मिलेगी, देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। और वैसे कहा जाता ना कि अगर घर से आप कहीं भी जाएं तो ब्रेक तो मिलता ही है, सो व्हाई नॉट भोपाल। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिन में 36 से 38 डिग्रीज तक मिल सकता है, रात को थोड़ी सी ठंडक हो जाती है 26-27 डिग्रीज, और अगर आप लेट जून में प्लान करेंगे तो आपको हल्की हल्की बारिश भी वहाँ मिल सकती है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं जनाब, प्लानिंग छोड़िएगा मत।

कई गाने सुनकर ऐसा नहीं लगता कि हाय बस ट्रैवल करते ही रहो और करते ही रहो। जी हाँ, रेनबो डेस्टिनेशन सुन रहे हैं आप और मैं हूँ ज्योतिका आपके साथ। और आज हमारी डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश, जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी भोपाल की। तो अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से लगभग 45-46 किलोमीटर दूर है सांची, एक छोटा सा शांत सा टाउन लेकिन दुनिया भर में मशहूर। यहीं स्थित है सांची स्तूपा, जो एम्परर अशोका ने 3rd century BCE में बनवाया था और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जी हाँ, बच्चों को अगर आप यहाँ ले जाना चाहें वो बहुत कुछ सीखेंगे, समर वेकेशंस के बाद स्कूल में इस टॉपिक पर बात भी कर पाएंगे। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ महसूस होती है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, शांति। आज के फास्ट पेस्ड ज़माने में ऐसी जगहें बहुत कम होती हैं जहां आपको वो सुकून मिल सके, तो ये उनमें से एक है। फैमिली के साथ अगर आप हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सांची ज़रूर लिस्ट में होना चाहिए। ये बच्चों को भी बताता है कि भारत की विरासत कितनी समृद्ध है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। भोपाल से आप खुद भी ड्राइव करना चाहें, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। टैक्सीज और बसेस भी अवेलेबल रहती हैं। 46 किलोमीटर्स है तो आप लगा लीजिए 1.25 घंटे की ड्राइव होगी। टिकट्स यहाँ पर फ्री एंट्री है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बाहर से आया है, कोई फॉरेन से आया है, तो उनकी टिकट आपको वहीं काउंटर पर पता चलेगी। तो मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर सी डेस्टिनेशन के बारे में बताया है, तो व्हाई नॉट प्लान अबाउट इट।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

और अब भोपाल से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये भी पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 45 किलोमीटर दूर है भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। सोचिए, आज हम मोबाइल फोन्स और एआई की दुनिया में जी रहे हैं और भीमबेटका में हमें उन लोगों की कहानी मिलती है जो हजारों साल पहले पत्थरों पर अपनी जिंदगी के दृश्य बना रहे थे। एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और डेली लाइफ के चित्र आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये डेस्टिनेशन सिर्फ साइट सीइंग नहीं, एक टाइम मशीन जैसा एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैं अब दोबारा आपको कह रही हूँ, हर कोई प्लान करता है हिल स्टेशन चलते हैं या कोई बीच वेकेशन चलते हैं, लेकिन अगर आप सच्ची में कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। आई एम श्योर समर वेकेशन चाहे बच्चों के हो, लेकिन अगर आप उनके साथ वहाँ जाएंगे ना, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन कि ओह कहाँ आ गए, लेकिन आप ये जरूर लेकर वापस जाएंगे कि वाह मज़ा ही आ गया।

रेनबो डेस्टिनेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन की तरफ, पंचमढ़ी। जी हाँ, पंचमढ़ी नर्मदापुरम रीजन की सतपुरा रेंजेस में स्थित है और इसे सतपुरा की रानी कहा जाता है। भोपाल से रोड ट्रिप करते हुए यहाँ पहुंचने में लगभग आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं और आप बहुत आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको ट्रैवल बताना चाहूँ तो बाय रोड मैं आपको बता चुकी हूँ, बाय ट्रेन और टैक्सी भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। वैसे कोई डायरेक्ट ट्रेन पंचमढ़ी तक यहाँ नहीं है, लेकिन आप वंदे भारत एक्सप्रेस या जबलपुर शताब्दी है जिससे आप भोपाल पहुंच सकते हैं और वहां से आप एक प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप खुद भी ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप यहाँ लगभग 3.5-4 घंटे तक पहुंच सकते हैं, अपनी ड्राइविंग के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप ट्रेन और टैक्सी का कॉम्बिनेशन बनाकर एक प्रॉपर प्लान करके पहुंच सकते हैं। बसेस भी अवेलेबल रहती हैं और यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स, केव्स, फॉरेस्ट और ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स सब कुछ यहाँ मिल सकता है। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ आपको मिलेगा और सनसेट देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बी फॉल्स हो गए, पांडव केव्स और हांडी को जैसे जो स्पॉट्स हैं पूरी फैमिली को इम्प्रेस कर देते हैं। ये वो जगह है जहां आप फोन से ज्यादा नेचर को देखना शुरू कर देंगे और अपने डिसीजन पर गर्व करेंगे कि वाह किस खूबसूरत जगह हम आए हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। जून का महीना चल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अर्ली जून में वहां ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी धूप जरूर मिलेगी, सनी रहेगा, ब्रीजी रहेगा, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा वो वाटरफॉल्स देखने में, केव्स घूमने में। लेकिन अगर आप लेट जून ट्रैवल करेंगे तो हल्का हल्का मानसून आपको नॉक नॉक करेगा वहां पर और हिल स्टेशन पे थोड़ी सी मिस्ट और फॉग रहेगी। सो अगर आप वहां ट्रैवल करना चाहते हैं तो कॉटन क्लोथिंग काम आएगी आपके, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और जैसे मैंने कहा अम्ब्रेला और पतली सी कोई लाइट रेन जैकेट होती है ना वो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम का तो कुछ भरोसा नहीं होता ना भाई।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और आज हम बात कर रहे हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मैं आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश। हमने अभी बहुत सारी बातें करी हैं, समर वेकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेट मी टेल यू, अभी भी वक्त है प्लान करने का। अगर फैमिली में वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं तो मध्य प्रदेश उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं। कान्हा नेशनल पार्क मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ उमारिया डिस्ट्रिक्ट में और पेंच सिओनी रीजन में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और यहाँ टाइगर साइटिंग्स के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते, है ना। सफारी के दौरान जब जंगल में अचानक डियर नजर आए या किसी टाइगर के फुटप्रिंट्स दिखे ना, तो बच्चों के चेहरों पर जो एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, आई एम श्योर यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दैट। क्योंकि ये सिर्फ वेकेशन नहीं होती है, ये नेचर से रिकनेक्ट करने का मौका होता है। जी हाँ, अब मैंने आपको बता तो दिया है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, लेकिन अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बहुत सारे तरीकों से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट बाय एयर जाना चाहें तो जबलपुर एयरपोर्ट आपको यहाँ से कम 160 किलोमीटर्स दूर रहेगा। 3.5-4 घंटों की ड्राइव करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आगे रायपुर एयरपोर्ट कम से कम 250 किलोमीटर रहेगा कान्हा से दूर। नागपुर एयरपोर्ट 300 किलोमीटर, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पहुँचना चाहें बाय एयर तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हैं, अगर आप आना चाहें तो आप जबलपुर जंक्शन भी उतर सकते हैं मध्य प्रदेश, गोंडिया जंक्शन है महाराष्ट्र में, आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और अपने आप को इस नेचर से जुड़े रीजन में डाल सकते हैं, टाइगर साइटसिंग में। ओहो क्या मज़ा आता है, आई एम श्योर यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस। तो बस फटाफट गूगल करिए हाउ टू रीच हेयर एंड अपना ट्रैवल प्लान कीजिए, समर वेकेशंस आर स्टिल ऑन।

आप खुद से भी प्यार करने लगेंगे और मध्य प्रदेश से भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम किसी ट्रेन, फ्लाइट या बस में नहीं है, बल्कि रेडियो की जादुई लहरों पर सवार होकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के दिल के बहुत ही खूबसूरत शहर इंदौर में। जैसे ही हम इंदौर की सर जमीन पर उतरते हैं, सबसे पहले महसूस होती है इस शहर की सफाई और तहजीब। इंदौर को लगातार भारत के सबसे साफ शहरों में शुमार किया गया है। अब जरा मेरे साथ चलिए ना पुराने इंदौर की शान, राजवाड़ा पैलेस के सामने सात मंजिला ये ऐतिहासिक इमारत जो है होलकर राजवंश की कहानी सुनाती है। शाम की रोशनी में राजवाड़ा और भी खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, इंदौर की बात हो और खाने का जिक्र ना हो ये तो नामुमकिन है। सुबह सुबह गरम गरम पोहा और मीठी जलेबी की खुशबू ओहो हवा में घुल सी जाती है। ये शहर अपने स्ट्रीट फूड के लिए पूरे देश में मशहूर है, फिर वो भुट्टे की महक हो या फिर शाम का वो बाजार। जी हाँ, जैसे जैसे रात गहरी होती है, इंदौर का एक और रंग सामने आता है, सराफा बाजार। दिन में सोना चांदी का बाजार और रात में खाने पीने वालों का स्वर्ग। यहाँ की रौनक और स्वाद दोनों याद रह जाते हैं। तो दोस्तों, रेडियो की इन लहरों पर इंदौर आप तक अगर पहुंचा हो तो यहां जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि वेकेशंस की यादों में टेस्ट भी तो होना चाहिए। और जब टेस्ट आपकी जुबान पर रहता है तो जगह हमेशा हमेशा दिल में रहती है।

दोस्तों जब ट्रैवलिंग की बात होती है ना तो मेरा तो रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ, इंदौर से थोड़ा सा आगे चलेंगे। और अब जब घर लौटते वक्त कुछ खास लेकर आपको जाना हो तो मध्य प्रदेश की हैंडलूम्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं, है ना। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर लगा लीजिए है महेश्वर, और अशोकानगर रीजन में है चंदेरी। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ पूरे देश में अपनी एलिगेंस के लिए मशहूर हैं। ये भी यहाँ एक कई परिवार ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर वीविंग का काम करते हैं आज भी। जी हाँ, अगर आप वहाँ विजिट करेंगे तो यू कैन सी सच फैमिलीज जो आज भी ये काम कर रही हैं। शॉपिंग सिर्फ खरीदारी थोड़ी होती है ना, कभी कभी वो एक शहर की याद को अपने साथ घर ले जाने जैसा होता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बाय एयर यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंदौर में है, और आगे चंदेरी और महेश्वर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर आपको ढाई घंटे दूर रहेगा। तो आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, और इंटरस्टेट बसेस भी यहाँ चलती हैं। ट्रेन से जाना चाहें तो इंदौर जंक्शन ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। तो ट्रैवल कीजिए ना, और करते ही रहिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के हेरिटेज सर्किट पर हैं तो ओरछा और खजुराहो जरूर देखिएगा। खजुराहो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अपनी वर्ल्ड फेमस टेंपल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों उपलब्ध हैं। आप सर्च करिएगा तो आपको अपनी जिस भी तरफ से आप आ रहे होंगे आप वहां पहुंच सकते हैं। वहीं ओरछा बेटवा रिवर के किनारे बसा एक हेरिटेज टाउन है जहां के महल और छतरियां किसी फिल्म सेट से कम नहीं लगते। ये दोनों डेस्टिनेशंस बताते हैं कि भारत की कला और आर्किटेक्चर कितनी अद्भुत रही है। यहां आकर सिर्फ फोटोज नहीं मिलते हैं, कहानियां मिलती हैं। जी हाँ, कहानियां।

तो दोस्तों, आज रेनबो डेस्टिनेशन में हमने घूमा मध्य प्रदेश, भोपाल की झीलों से लेकर सांची की शांति तक, भीमबेटका की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से पंचमढ़ी के वाटरफॉल्स तक। जी हाँ, एक ही राज्य में इतनी डाइवर्सिटी, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। अगर इस गर्मियों में आप एक ऐसा वेकेशन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि लर्निंग, एडवेंचर, फूड और फैमिली बॉन्डिंग भी दे, तो मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन FM रेनबो पर। थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠.
1: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni kan sokhe program le swagat kori ase. Agajwani Kohima FM Tragoban 103 MHz te. My dear friends, it is 6 o'clock in the evening and it is time once again for your favorite Life on in Hindi Film Songs show. Apni kan laga host aur dost Arjit Tumjan logade for the next about 1 hour 10 minutes. We will be celebrating the magic of Bollywood music together, my dear friends. So whether you are relaxing at home, traveling back from work, spending time with family or simply enjoying this pleasant evening, let the melodies of Hindi cinema add a special touch to your day today. So my dear friends, the best part of this program is apni kahani geet kan choose kori ase, call us live, share your favorite Hindi film songs, dedicate them to your loved ones, and send your greetings and best wishes across the airwaves. So keep your phones ready, dial in this number and become a part of tonight's musical journey. My dear friends, from timeless classics to evergreen favorites and memorable hits, we will play the songs that bring back beautiful memories and create new ones as well. So my dear friends, apni kan sobhi jani ase, phone number ase 0370-2243036. Right, for phone number, 0370-2243036. And we have the first caller with us. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Namaskar.
1: Hello, namaskar. Who is on the line?
2: I am Ramesh Prajapati ji, Gram Maya Tehsil Rehti, Jila CEO and MP se bol raha hu, sir ji.
1: Kya baat hai, Ramesh ji, aap aaj program mein pehla caller ho raha hai.
2: जी
1: का किस्मत कितना अच्छा है आज
2: जी.
1: आज क्या क्या किया आप ये पहला कॉल मिला निकले बताइए
2: आपका धन्यवाद हमारा कॉल उठाने के लिए.
1: क्या बात है, ठीक है. रमेश जी बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा.
2: कण कण में है भगवान फिल्म का नाम.
1: फिल्म का नाम भगवान.
2: कण कण में है भगवान.
1: कलाकार
2: कण कण
1: मतलब
2: कण कण में है भगवान.
1: अच्छा, ये वाला शायद मेरा म्यूजिक बैंक भी नहीं है. आई एम सॉरी.
2: नहीं है तो फिर प्रेम कहानी
1: मैं देखता हूँ. हाँ, प्रेम कहानी है. कौन सा वाला गीत.
2: दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल दूरी हमें दूसरा.
1: अच्छा, ये आपको बताता हूँ मैं, तारिया की सॉन्ग, चाल तारिया मैं धूप जाए एक.
2: हाँ, ये
1: ठीक है. तो और किसी का नाम लेना चाहूंगा.
2: जी. सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ.
1: थैंक यू.
2: फिर भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज मोदी जी है, कैसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और लोकेंद्र वर्मा जी है उज्जैन से, धर्मवीर है दिल्ली से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णमा जी है, अविनाश जी है, और पूनम जी है, राकेश जी है, बिमल जी है और अमल जी है, गोल्डी जी है, और अमर सिंह साहू जी है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्र है.
1: क्या बात है, इतना सारा नाम आप मतलब मेमोराइज हो रहा है क्या. क्या बात है. और रमेश जी बताइए आज का मौसम कैसे रहा और आज का बिजनेस कैसा रहा आपका.
2: बिजनेस ठीक रहा, मौसम भी बढ़िया है आज तो, मतलब ना हवा भी नहीं आया ना अभी पानी आया, मतलब बढ़िया है. कल तो रात को बहुत पानी और हवा बहुत तेज आया था.
1: ठीक है.

0: आज पूरा दिन धूप है, मतलब आज तो कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा, और आज का सिलाई एकदम ठीक ठाक हुआ?
0: हाँ हाँ सिलाई ठीक ठाक हुआ था।
1: क्या, क्या बात,
0: धन्यवाद आपको पहचानने के लिए।
1: रमेश जी, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कुछ सिलाना होगा।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, हमारा आवाज हमारा आप मतलब आपको हमको मतलब आप कपड़े सिलने के लिए मिला, कितना अच्छी बात है, हमारी किस्मत चमक जाएगी आपके कपड़े सिलेंगे तो।
1: ठीक है, तो थैंक यू सो मच,
0: बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है आपका, आइए हमारी दुकान पे।
1: थैंक यू, थैंक यू। तो आपका आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, तो सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: जी जी जी जी, धन्यवाद,
1: यो वेलकम,
0: बाय
1: बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खन्ना का रेगुलर लिसनर था कि ऐसे रमेश प्रजापति यूपी ब्रा মতলব এমপি পৰা থাকি আছে আৰু তাই ৰিকুৱেষ্ট কৰি লগা গীত আমি খান শুনি হ'ব প্ৰেম কাহানী ফিল্মৰা কিশোৰ কুমাৰ আৰু লতা মংগেশকাৰৰ অৱস্থাই শুনি কিনে এনজয় কৰিবি আৰু তাইৰ নাম লোৱা চবকে ডেডিকেট কৰি দি আছে।
2: তেৰি আদায়েগী তো হম তুম মিলেংগে

0: Well, my dear friends, I'm going to go to the next caller. Hello.
1: जय माता
0: दी प्रोग्राम में स्वागत है।
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है
0: जी। पूरण वर्मा प्रोग्राम में स्वागत।
1: और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतनल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी पूरण वर्मा प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा।
1: जी सर मैं आज सुनूंगा फिल्म का नाम है मंजली।
0: मंजली
1: हाँ जी
0: ठीक है मैं देखता हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ मंजली। मंजली
1: उसने गाने के बोले गम का पसाना बन गया अच्छा
0: जी लेकिन मेरा म्यूजिक बैंक में ये शायद ये फिल्म नहीं है। और बताइए दूसरा फिल्म।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा सोल्जर।
0: बॉर्डर
1: हाँ जी सोल्जर सोल्जर
0: सोल्जर
1: यस
0: ओके।
1: और उसमें गाने के बोले तेरा रंग बल्ले बल्ले।
0: तेरा रंग पले पले
1: हाँ जी सर।
0: और किसी का नाम लेना चाहूंगा।
1: मिल गया सर गाना।
0: हाँ मिला है।
1: सबसे पहले तो आप सुनेंगे।
0: थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त राकेश है भगवान सिंह परवान जी है रमेश प्रजापति जी है अभिनाथ जी है गोल्डी बाई है और रमेश पात्रे है अमल है बिमल है और मेरे दोस्त है रमेश प्रजापति भैया जी उनके साथ में जो सुनने वाले दुकान पे ग्राहक आए हैं उनके लिए भी मैं सुनाना चाहता हूँ ये गाना।
0: क्या तमाम क्या बात है। और पुराण वर्मा जी आज का दिन कैसा रहा।
1: बस सर बढ़िया रहा आज का दिन। और यहाँ हमारे यहाँ कल रात को बारिश हुई थी अच्छी खासी और आपका कार्यक्रम तो सुनते ही और भी दिन बन जाता है सर हमारा।
0: क्या बात है आपसे बात करके मेरा यहाँ दिन भी बन जाता है। और पता है आज क्या काम करता था आप।
1: जी अभी तो हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी है तो अभी खेत खाली है और एक डेढ़ महीना बाद में बाजरा की फसल बोएंगे सर यहाँ।
0: आप मतलब खेत काम कर सकता है।
1: हाँ जी खेती मम्मी पापा करते हैं वो तो मैं तो घर पे और रेडियो सुनता रहता हूँ और मम्मी पापा है वो करते थोड़ा बहुत काम उनके साथ बैठा लेता हूँ सर।
0: अच्छा तो ठीक है बहुत अच्छा हुआ आपसे बात हुआ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: थैंक यू सर धन्यवाद।
0: ओके यू वेलकम बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स अमी खानला का रेगुलर लिसनर था कि ऐसे बुरान वर्मा फ्रॉम राजस्थान तह रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमी खान खुनी अब सोल्जर फिल्म रा जसपेंदर नारुला और सुनु निकम आवाज थे म्यूजिक दिस अनु मलिक लिरिक्स समीर हुनी के ना एंजॉय कर भी तह नाम लो सब के इतु की डेडिकेट कर दिए से।

0: Well, my dear friends, আমি খাল লগতে নেক্সট কলার বিথ থাকি আছে। হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো, হু ইজ কলিং?
1: হ্যালো, জি মে গ্রাউন্ড নরে জেলা সতারা মহারাষ্ট্র সে তনুশ্রী সুরে বাত কর রহে হ্যাঁ।
0: ওকে, আপকা শুভ নাম?
1: তনুশ্রী।
0: দানুশ্রী?
1: তনুশ্রী, ই এ এন মে মে সে চা রহা হ্যাঁ।
0: ওকে, দানুশ্রী প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায়। অর পতা হ্যায় আজ কোন সা বালা কি সুনা চাহুঙ্গা?
1: ফিল্ম কা নাম হে হম।
0: जी,
1: हम
0: फिल्म का नाम हम।
1: या
0: ओके, फिल्म का नाम हम। मैं देखता हूँ शायद हम मेरा पास नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, नहीं है मेरा पास।
1: लुटेरे
0: हम मैं अच्छा और पता है दूसरा फिल्म का नाम?
1: लुटेरे
0: ओके
1: क्या?
0: लोते रे मेरा पास में ये भी नहीं है। आई एम सॉरी।
1: साजन?
0: साजन है हाँ
1: जी। सर मैं गा कर सुनाओ।
0: साजन से कौन सा वाला गीत?
1: मैं गा कर सुनाओ।
0: पार्डन,
1: मैं गा कर सुनाओ क्या?
0: मतलब आप मराठी में बात करता है, मैं आपको समझ में नहीं आता है।
1: पर मैं गा कर सुनाती हूँ, सुनाओ क्या?
0: हाँ हाँ
1: जी। मेरा देवी
0: क्या बात है।

0: कुछ भी इसके से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन।
1: क्या बात है, क्या बात है धनुश्री
0: जी।
1: तो ये वाला गीत प्ले करना चाहूंगा आप?
0: जी सर। और मेरे पापा सुन रहे, मेरे पापा की दो शब्द मेरे पापा की खूब बोलिए।
1: श्योर श्योर श्योर प्लीज।
2: सर जी,
1: जी
2: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, प्रोग्राम में स्वागत है। और आपका शुभ नाम?
2: राम सुरवे।
1: राम सुरवे,
2: सुरवे
1: ओके। और आप मतलब ये फोन नंबर कैसे कहाँ से मिला?

0: जी अपनी बेटी है ना
1: जी
0: दिन भर सुनती रहती आपने चैनल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: बहुत है ना आपकी।
1: क्या बात है।
0: हाँ दिन भर सुन रहती है और आपने तुम्हारा आवाज है सर
1: जी
0: आपका आवाज बहुत उनको अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच।
0: बहुत तारीफ करती बहुत दिन भर तारीफ कर रही। जब मैं काम पे आता हूँ ना मैं
1: जी
0: तो बहुत आपकी तारीफ करती सर।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: हाँ जी सर।
1: और बताइए आज का दिन कैसा रहा?
0: बहुत अच्छा सर जी।
1: और महाराष्ट्र कौन से वाला जगह से आप लोग?
0: सतरा जिला सर।
1: सतरा जिला।
0: हाँ
1: ओके। तो मिस्टर राम जी आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा। और धनुश्री का जो रिक्वेस्ट गीत है वो अभी प्ले कर दूं?
0: एक मिनट सर, धनुश्री आपसे कुछ बात करना चाहती है। एक मिनट सर।
1: ओके ओके श्योर।
2: हेलो सर, मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: श्योर श्योर।
2: पहले तो मेरी सिस्टर है अंजलि भट्टाचार्य और अमोल भट्टाचार्य और मेरे पापा तो अभी सुन रहे हैं और आपको और हमारे सभी श्रोताओं को।
1: वाओ वाओ, थैंक यू सो मच तनुश्री, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सुनते रहना और ऐसे हमको मतलब हम आकाशवाणी FM ट्रगवन का साथ जुड़ते रहना, ठीक है?
2: जी सर जी।
1: ओके थैंक यू, बाय बाय।
2: ओके बाय बाय।
1: या তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি খালনগর রেগুলার লিসনার থাকি আছে হলিবি আজি পয়লাবার কথা করে আছে ধনুশ্রী ফ্রম মহারাষ্ট্র আর তাই লাগা বাবা রাম সেভরি তাই দুজন কথা পাতিছে, ভাল লাগিছে। এতিয়া শুনিব আমি কানি সাজান ফিল্ম কুমার সানু আর অলকা জেকনিক আওয়াজতে, মিউজিক দিছে নদীম আর শ্রাবণ, লিরিক্স সামিয়া, শুনে কিনা এনজয় করবি। আর তাই নাম লওয়া সবকে এই গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে।

0: Well, my dear friends, আমি এখন আমাদের নেক্সট কলার থাকি আছে। হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো, হু ইজ কলিং?
1: জি, প্রেম সিং সাসদেবরম, গ্রাম বছড়া, তহসিল নারদা জেলা উজ্জয়িন।
0: ওকে প্রেম সিং জি, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায় আর বতাইয়ে।
1: থ্যাংক ইউ সো মাচ, কেসে হ্যায় আপ?
0: বিলকুল বড়িয়া হুঁ, আর আপ কেসে হুঁ?
1: মে ভি বহুত আচ্ছা হুঁ, আর আপসে বাত করকে আর ভি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। তো মে মোবাইল অ্যাপ পে সুন রহা হুঁ।
0: ক্যা বাত হ্যায়, আর বতাইয়ে আজ কোন সা ওয়ালা গীত সুনা চাহুঁগা?
1: परदेश फिल्म का सुनना चाहूंगा।
0: ओके, परदेश फिल्म का कौन सा लगे?
1: जरा तस्वीर से निकल के सामने आ, मेरी महबूबा।
0: परदेश, परदेश वाला मैं आपको ये
1: शाहरुख खान वाली फिल्म है
0: जी, शाहरुख खान वाले माय फर्स्ट डे इन यूएस है, आपको सुनाता हूँ। नहीं होना था मेरे महबूबा, ओ ये वाला।
1: हाँ ये वाला मेरे महबूबा।
0: ओके
1: जी जी,
0: और किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: नाम तो बहुत सारे दोस्त है हमारे आकाशवाणी की।
0: ओके,
1: उसमें भगवान सिंह वर्मा, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अभिनव, संगीता जी, कानपुर से पूनम जी, गंगटोक से पूनम जी, और आकाशवाणी लखनऊ की दीप्ति जोशी, और आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी है, पूर्वोत्तर से दीपाली जी है, ये सभी लोग सुनते हैं कार्यक्रम में, पार्टिसिपेट भी करते हैं फोन प्रोग्राम में।
0: ठीक है, और अच्छा
1: आपके यहाँ मौसम कैसा है अभी?
0: मौसम एकदम बढ़िया है, आज बहुत बारिश हुआ था और आज थोड़ा ठंडे ठंडे लगता है।
1: अच्छा,
0: और आपका आपका मौसम कैसा है?
1: जी यहाँ पे भी सुबह बारिश हुई, रात में भी बारिश हुई थी। अभी यहाँ पे भी ठंडा मौसम हो गया है।
0: ओके
1: हाँ जी,
0: और प्रेम सिंह ससुदिया जी, आप ऐसे मतलब क्या काम करता है?
1: मैं खेती का काम करता हूँ, किसान हूँ।
0: ओके, किसान, खेती का कौन सा वाला खेती?
1: गेहूँ लहसुन की फसल लगाई जाती है, और अब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, सोयाबीन का, और खेती कितना कितना पड़ा है?
1: हमारे पास में 30 बीघा का खेत है।
0: क्या बात है, 30 बीघा।
1: हाँ जी, काफी पैदावार होती है फसल। एक बार अगर गेहूँ लगाया जाए ना पूरी खेती में, तो कम से कम 250 से 300 बोरी क्विंटल मतलब निकलते हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: और उसके बाद और कुछ लगाता है?
1: सोयाबीन भी लगाई जाएगी ना, सोयाबीन भी 100 से 150 बोरी निकलती है।
0: अच्छा, तो ठीक हाँ है, थैंक यू सो मच प्रेम सिंह से। प्रेम सिंह जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, उज्जैन से।
1: जी सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, आपका नाम जानना चाहूंगा।
0: मेरा नाम तुमजन।
1: तुमजन
0: जी, तुमजन।
1: हाँ, एक बार आपने बताया था
0: जी,
1: लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए मैंने फिर से पूछा आपको।
0: अच्छा
1: जी, हाँ, क्योंकि आपसे कई बार बात हो चुकी है लेकिन नाम मैंने एक बार आपने बताया था, फिर मुझे कंफर्म करने के लिए आज डबल पूछा आपसे।
0: अच्छा ठीक है, अभी
1: तुमजन है ना?
0: तुमजन, TEMJEN, तुमजन।
1: हाँ हाँ।

0: अभी पक्का कंफर्म हो गया?
1: जी बिल्कुल पक्का कंफर्म हो गया, याद रहेगा मुझे।
0: लॉक कर दो?
1: जी बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा।
0: ठीक है प्रिंस सिंह जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: ओके यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम सिंह ससुरिया उज्जैन ब्रा मिखान रेगुलर लिसनर थकी आसे और तई रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिखान शुनी हम पार्ट तेईस फिल्म ब्रा कुमार सानु और अलका याग्निक अवस्थे म्यूजिक दिशे नदीम और श्रावण लिरिक्स अनंत बक्सी और तई नाम लो सबके इतु की टिकेट कर दिए शुनी के ना एन्जॉय करी माई डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, আমি এখানে আমাদের নেক্সট কলার থেকে আছে। হ্যালো,
1: হ্যালো, নমস্কার।
0: হ্যালো, নমস্কার। আচ্ছা, রাকেশ জি শিমলা সে প্রোগ্রামে স্বাগত হয়। আর বতাইয়ে, আজ কা মতলব কোন সওয়াল আর কি শুনা চাহুঙ্গা?
1: আচ্ছা, আপকে পাস শুনলে মিলেগি ক্যা হোতে কাচ্চে ধাগে।
0: কাচ্চে ধাগে,
1: কাচ্চে ধাগে,
0: কাচ্চে ধাগে, ये मैं देखता हूँ।
1: एक अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात होगी।
0: कच्चे हीरे है, कच्चा चोर है, मतलब आई एम सॉरी, मेरा म्यूजिक बैंक में ये नहीं है।
1: अच्छा, ये नहीं है, नहीं। तो चलो चलो, कोई
0: बताइए दूसरा फिल्म का नाम।
1: तो बेवफा सनम
0: जी,
1: बेवफा सनम,
0: बेवफा सनम है
1: जी जी।
0: कौन सा वाला गीत?
1: उसमें गाना है जिंदगी में प्यार सभी किया करते हैं।
0: जिंदगी पास सचना दार प्यार, ये बोला?
1: नहीं, जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, सोनू निगम की आवाज में।
0: जी जी जी जी,
1: ये
0: जिंदगी में तो सभी प्यार किया
1: करते हैं। हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ। और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा पूरण वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश टेली हैं, और सुनापुरन जैसे अमल भस्माचार्य हैं, विमल भस्माचार्य हैं, अंजलि भस्माचार्य हैं, और अभी जो फर्स्ट लड़की कॉलर आई थी हमारे तनुश्री है, और जी जी, तो दुर्गेश नागरपुरी है, और तमाम सुनने वाले श्रोता है, और भगवान सिंह परमार है, और राम नरेश कंजर, तमाम सुनने वाले श्रोता जो अभी जो है कोई ना थी, अभी जो लाइन पे अभी बाकी दो तीन कॉलर और देंगे तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: चलो चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच राकेश जी। और आज मतलब राकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे बारिश का दिन होता है आजकल, ये बारिश का वजह से आपका जो एप्पल का खेत है या तो सर फ्रूट्स का खेत है उसको खराब नहीं होता है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं होता। हाँ, अगर ओला गिर जाते हैं तो उससे खराब होते, और जब तूफान आता है तो उसकी जो है पत्तियां जो है थोड़ी टूट जाती है, और जो छोटे छोटे एप्पल के दाने लगे वो छूट जाते, फिर वो झड़ जाते तूफान के कारण और ओला गिर के कारण। ऐसे नहीं होती, क्योंकि अगर जब बारिश आएगी तो उसमें जो है कलर अपने आप आ जाएगा एप्पल में।
0: अच्छा
1: जी जी जी जी,
0: तो मतलब तूफान तो नहीं आ रहा है ना? मतलब आजकल
1: नहीं, तूफान नहीं आ रहा, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, इसमें अगर जैसे आंधी तूफान अगर बहुत तेज आती तो फिर एप्पल जो है टूट के जो है जाली से गिर जाती है।
0: राइट राइट, तो थैंक यू सो मच राकेश जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट।
1: धन्यवाद,
0: यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, राकेश फ्रॉम शिमला, একটা অ্যাপল লগা ফার্মার থাকি আছে, আর তাই আমি খানলাগা রেগুলার লিসনার ব্যক্তি থাকি আছে, তাই রিকুয়েস্ট করা গীত আমি খান শুনি হব সোনু নিকম লাগা অবস্থায়। মিউজিক দিছে আনন্দ মিলেন, লিরিক্স রানী মালিক, শুনি কিনা এনজয় করবি, আর তাই নাম লওয়া সবকে।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश

0: प्रदेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के

0: बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development